मेरो देश खासी रहोस्, मर्न परे मै मरौं, मेरो देश बाँची रहोस्, मेरो देश बाँची रहोस्।

0: இளம்பு பிரேக் டைம்.
1: शिशु तथा बालबालिकालाई अत्याधिक गर्मीबाट जोगाउन, बालबालिकालाई दिउँसोको चर्को घामबाट टाढा राखौं, उनीहरूलाई हलुका र खुकुलो कपडा लगाइदियौं, गर्मीबाट बचाऊ।
2: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र।

0: बाँचौ अरूलाई पनि बचाऊ।
1: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र।

0: Elambu FM 89.6 MHz.
1: अब रंग फेसु मुला रेडियो कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ नला विश्वासी चमक बसुगो रंग आदि बेरिदा हरंग लसी सम्हाल लवन मुला जयमसी तथा नमस्कार लासु फ्याफुल्ला स्पार्क माई फेथ तथा नला विश्वासी चमक बसुगो अंक 64 रे रंग निदा स्वागत मुला न वियोग तामाङ न तिनी रङ द न्याय बढेसी मुला परमेश्वर देन रङ न सम्बन्ध कदे नुप्प मुला चु प्रश्न कदे द जवाफ रङ न लुहिरी आधी बेरला सामना लामा याङला मती 13:20 युङबला घरङमुबा सरिक्यार परब तबा ब्लुला अर्थ चुनोन हिन्बा जुन मिसे परमेश्वरला वचन याङसी तुरन्त विश्वास लला लरन रङमा कृष्ण गदेसे रङला आत्मिक लुई चुरङलासी नोन तिमोला थेनेगदेसे परमेश्वरला वचन ज्ञानमुला जोसे थेनेगदेला तिङ आनन्दसे प्लिङमुला थेन्दे हरेक हप्ता विश्वासी पूर्वक सहजरी उपस्थित तामुला थेनेगदेसे आशा लमुला कि परमेश्वरसे थेनेगदेला लागरी देन गे लसुमुला तसै जब आँधी हाला लानन्से थाहा याङमुला कि थेनेगदेला विश्वास लाब्रिट्टा लुङ थान्बा आरे मती 13:21 तर थेनेगदेला विश्वास लट्टा आरेबा से नमस्ते छिन्नङ जे चिला ओछे परमेश्वरला वचन द विश्वास लबसे लमा थेनेगदे द आपद विपद खमाइ हेन्से थेनेगदेसे विश्वास लमा हाला लानन पटक परमेश्वर से रङला लुहिरी आधी बेहेरी हाबरी पिन्सुला चु आर्थिक आधी बेहेरी ताबारी हमला जब रङ वा रङला जमहानला जहाँ रङ वा रङला जहानला अर्को नामला सदस्य रङला महत्वपूर्ण आवश्यकता गते छोड्न लबरे आवश्यक टङ्गला अभावला कारणसे चुनौती पराप बालन मुसुला बारेरी हामला रङसे घेरी थन्सुबा आशा लसुबा हे जागिर सफल अतनी हरङ कदे रङ गरी मध्ये तिगैला लागिरी रङला शिक्षाला लागिरी टङ्गा हनङ्ग्यम हाला विवाम ताम्री रङ अनिश्चित मुसुला रङकारी मध्ये लालन रङला व्यक्तिगत लुइरी आदि बेहेरी भक्ति वा मुला तबरी हमला रङ अभिभावित मुसुला थेन्दे रङसे ब्या लदोला मिसे सम्बन्ध तोडप लजी वा तबरी हमला थेन्दे रङसे उपयुक्त लुई रो याङबरी हमला आरे वा रङसे ब्या लबरी हालै रूप्त लसुला तसै ब्याला खर्च फाबरे टाङ्गा हनङ्ग्याम हमुला विवा रङ्ग थाहा आरे थे आदि बेरीला प्रक्रिया हरङ लसी पिनला बिसी रङसे छनोट लसुला लानन क्रिसन गरे परीक्षाला दुईरी लाग्याम थारेङ निमोला थेनी गदे विश्वासला च्याङ्न तामुला थेन्दे रङला परिस्थिति द पार लभ प्रयासरी रङलन आत्मनिर्भर दोब निर्णय लमुला आधी बेहेरी से थेनी गदेला टा प्रणाली द उजागर लजी थेन्दे थेनी गदेला टा हाइमा एन परमेश्वर देन छ्याम्ला नुप्पा सम्बन्ध रे लुबा आरे मुबा जसरी रोरी भरोसा थन्बरी समावेश मुला थेनी गदेला भरोसा थेनी गदेला रङलन शक्ति रे निहित मुला 2 कोरन्थी 9:8 परमेश्वर से एनी गदे द जम्मन मी तोबा परमेश्वर से एनी गदे द जम्मन से तोबा भन्दा लानन पिन्ना जमा हेन से एनी गदे देन छ्याम सदन लालन से गदे तला ओछे एनी गदे से जब गे लगारी ओछे एनी गदे से जब गेला लागिरी स्यन्द गदे द पिनबारी खम्ला चुरङला लुइला लागिरी परमेश्वर ज्ञामला व्यक्तिगत प्रतिक्रिया हिन्बा तसै तिग रङ साचिन्चु प्रतिज्ञारी विश्वास लस्युला वा जब आदि हामुला तिग रङ रङला आवश्यकता गर्दै छ्यामला सम्बन्ध ख्लासी लानन आत्मनिर्भर तारे दोबर से मुला तिगा रङ परमेश्वर से बिबारी से मुस्युला नै रङ द मौका पिन्न मुबा देन्चु आदि से रङ से नद असफल लस्युबा प्रमाणित लामुला हेरङ तसी नला आवश्यकता कदे छोन लाबला लागरी नदा रङलन योजना सोदला तिग्द विषम रङला योजना से गे ला आलानी जब रङला लुई आधी हमुला तिगा रङ परमेश्वर द रङला मायालु आवाला रुब्री स्वीकार लबरी जारी थन्स्युला जोसी रङला बेनन ज्यानला आवा भावनात्मक देन आत्मिक आवश्यकता देदा हेचा लबरी से मुस्युला थेन्दे क्षमायन थन्स्युला वा तिगा रङ परमेश्वरला चरित्री शङ्का लबरी डनमुला देन रङला आवश्यकताला दुईरी रङदा रो लाभा रो लाभा रोला इच्छा यङसे सामना लाभा आदि भेरिसे लारी याङला विश्वास गरे बाङबा मुला बिसी प्रकट लामुला आदि बेहरिदा हरङला सी समाप लासेला विवा बारेरी बो निला लागे नङ्गर एन याङदेन पिसुगो आमेन रङनिला जीवन रे परमेश्वर से प्रशस्त मात्र आशिष पिन्छु गए प्रभावशाली बाइबल शिक्षक सोवन भिक्टर यम लिखित सन्देश याङला भाषारी नेन्सुजी कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ कार्यक्रमलाई बारे रङनिला केही प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव मुसाम घन्दा सम्पर्क लसिगो घन्दा फोन नम्बर मुला 98 85 53 339 धन्यवाद हस् त त्यो समय रिङ बिदा दाजी रङनी छङमदानु जय मसी नमस्कार
2: Time check. It's 7 PM.
3: अहिले साँझको 7 बजेको छ।